0: तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
1: डन
0: डन
2: गर्मी की निहार है
1: हाँ।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है
1: ना, ना।

0: आज सोमवार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है।
2: अभी आपने सुना फिल्म आराधना का ये गीत मोहम्मद रफी।

0: 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोर है को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आई नहीं हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
7: नितुम लो बुरन सिंह तमसोए अनिता तमसोए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आ गया या पाम मेरे तपाम मेरे वाह बेटा निका
8: अन्या मुतुम दो बुम्बई कोड़ा पटन मुतुम गुमरे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन मुतुम कितमई कोड़ा मुनी में उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के जिम दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर रंग गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
9: अलिंग मुनी सुरंग पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: अभी आपने सुना यह जरूरी संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायवासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म ये वादा रहा का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चांदनी से, लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र

0: रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर को भी बढ़ा स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 2,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफ्रीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: घंटों में पूरे राज्य को कवर करने की जताई संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज खेले जाएंगे दो रोमांचक मुकाबले। JSCA स्टेडियम में रांची टाइटंस और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगी पहली भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक कर 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। इस बीच NTA ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। आयुष मंत्रालय और हेबल्ड की ओर से कल एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के लाखों लोग एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने देशवासियों से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की है। नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं।
1: आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था और हैबिल के साथ मिलकर हम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें देश और दुनिया भर के लोग एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास करेंगे। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बनें, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ विश्व का निर्माण करें।
0: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दो सीटों के लिए हो रहे इस त्रिकोणीय मुकाबले में झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी मैदान में हैं। झामुमो और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं, जिससे वे दोनों सीटें आसानी से जीत लेंगे।
2: कई विधायकों में बहुत ही नाराजगी है और उन लोगों ने मन बना लिया है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को हराना होगा। तो आप देखिएगा, 10 से 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के इधर उधर करेंगे, क्योंकि वो व्यथित है।
3: 34 के 34 गठबंधन के साथ हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने के बाद जो शेष बचेगा उसकी भी गारंटी।
0: इधर भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके पास आवश्यक आंकड़ों से अधिक विधायकों का समर्थन है और वे दूसरी सीट पर जीत दर्ज करेंगे।
4: जो भी यहाँ पर विधायक इनके हैं, जिनको करप्शन का शेयर नहीं मिल रहा है, वो अंदर ही अंदर नाराज है और एक बिकाऊ विधायक की तरह राज्यसभा के बाजार में बिकने को तैयार है। और हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि निश्चित तौर से भाजपा के उम्मीदवार की जीत होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे।
0: नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय मीडिया और सोशल मीडिया सम्मेलन में देश भर से 350 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें झारखंड से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित 16 अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में भ्रामक सूचनाओं से निपटने, चुनावी साक्षरता और निर्वाचन रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगाए गए इन कैंपों में नागरिक अपना नाम जोड़ और सुधार सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मतदाताओं से बूथों पर जाकर अपने नाम जांचने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपए की रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत गढ़वा के नगर उटारी और गुमला कारागार में 531 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। इस अत्याधुनिक तकनीक से जेलों की सुरक्षा व निगरानी

0: व्यवस्था बेहद मजबूत होगी। रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। पिछले 10 दिनों के भीतर शहर में 37,000 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने पुलिस से वाहन चालकों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और गति सीमा का पालन करने की सख्त अपील की है।
1: 1 जून से 10 जून तक 34,000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा हुआ है और ज्यादातर जो उल्लंघन हो रहा है वो रोड पे जहाँ तहाँ पार्किंग कर देना, जिससे ट्रैफिक बाधित होना, विदाउट हेलमेट ओवर स्पीडिंग ज्यादा देखने में आ रहा है। इसमें हमारा फोकस है कि लोगों के अंदर एक बिहेवियरल चेंज आए और एक ट्रैफिक सिविक सेंस रांची वासियों में डेवलप करने के उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षार्थियों और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से रांची हावड़ा रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। ट्रेन संख्या 08161 आज रात 9:30 बजे रांची से खुलकर सुबह 6:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह कल रात हावड़ा से खुलेगी। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जो अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार संताल सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
2: एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफिशेंट रेनफॉल रहेगा और उसी की उम्मीद है। और पूर्वानुमान में भी सुना होगा कि इस साल थोड़ा सा ओवरऑल भारत के लिए भी मॉनसून थोड़ा सा डिफिशेंट रहने का चांसेस है और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने की भी जरूरत है।
0: झारखंड टी20 लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में रांची टाइटंस के भिड़ंत कोयलांचल सुपर किंग्स से होगी, वहीं दूसरा मैच छोटा नागपुर रॉयल्स और संताल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जाएगा। जेएससीए स्टेडियम में होने वाले इन मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। झारखंड की पहलवान प्रियंका महतो और प्रशिक्षक राजीव यादव अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ट्रायल के लिए रांची से सोनीपत रवाना हो गए हैं। राष्ट्रीय पदक विजेता और जेएसएसपीएस की प्रियंका 14 जुलाई को दिल्ली में होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेंगी। चयनित खिलाड़ी बाकू में होने वाले विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के झारखंड में दस्तक देने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मॉनसून वक्त पर, दस्तक बेअसर। प्रभात खबर के शब्द हैं, पंचायत सेवक रहते 20 साल पहले ली थी 500 रुपए की घूस, 80 साल की उम्र में जाएंगे जेल। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, मतदाता सूची में नामांकन जांचने के लिए बूथ पर जाएं लोग। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2004 के पहले उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट सचिव ने की 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष कैंप SIR के तहत नाम जोड़ने और सुधारने का होगा कार्य। मुख्यमंत्री की मतदाताओं से बूथों पर जाने की अपील। राज्य सरकार ने राज्य की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए दी प्रशासनिक स्वीकृति। गढ़वा और गुमला कारागार में आधुनिक CCTV कैमरे लगाने पर खर्च होंगे 16 करोड़ से अधिक। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर करने की जताई संभावना। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज खेले जाएंगे 2 रोमांचक मुकाबले। जेएससीए स्टेडियम में रांची टाइटंस और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगी पहली भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार हैं सुरोबी पान और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना उड़िया लोकगीत, कलाकार थे सुरोबी पान और साथी, क्षमा करें दिलीप निषाद और साथी। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, आज 13 जून को मुख्य रूप से विश्व रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य त्वचा और बालों में पिगमेंट की कमी वाली इस अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रति समाज में फैले भेदभाव को दूर करना है। एक अनुवांशिक स्थिति जिसके कारण त्वचा, बालों और आंखों में मेलानिन की कमी हो जाती है, ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। अल्बिनिज्म से ग्रस्त लोगों को समाज में भेदभाव, उपेक्षा और कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, इस विविधा कार्यक्रम में भेंटवार्ता के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज के भेंटवार्ता का विषय है बेरोजगारों के लिए TRTC का योगदान। भेंटवार्ताकार है संदीप बिरुली। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम संदीप बिरुली है। मैं RCT निदेशक 2025 से यहाँ पर हाजरत हूँ।
0: अच्छा, RTC आपने कहा ना?
1: RCT।
0: हाँ, उसका
1: RCT ग्राम मतलब होता है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान।
0: अच्छा, ये मतलब बहुत सालों से चल रहा है हमें लगता है।
1: ये जो है ना, हमारे वहाँ चाईबासा में 2010 से है। ये जो रूट सेटी जो है केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और जो है इनके मतलब यह से रूट सेटी का स्थापना हुआ था 1982 में।
0: हाँ,
1: उसी को देख के ये जो है ना RCT का स्थापना हुआ 2009 में। ये भारत सरकार और बैंकों के सहयोग से मतलब ये ट्रेनिंग चलाया जाता है।
0: अच्छा, मतलब कि बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है ये सेंटर चलाने का।
1: जी, ये हर जिला में एक RCT होता है और बैंकों के द्वारा मतलब जो वहाँ लीड बैंक होते हैं हर जिला में, तो वही उनका जो है ना RCT का स्पॉन्सर करते हैं। जैसे हमारे वहाँ पश्चिम सिंहभूम में बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे पश्चिम सिंहभूम का RCT का मतलब स्पॉन्सर कर रहे हैं।
0: जी, यानी कि आप बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ हैं।
1: जी, मैं बैंक ऑफ इंडिया से हूँ।
0: जी,
1: और जो हमारे बाकी हमारे स्टाफ होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे होते हैं। और निदेशक जो होते हैं, जैसे अभी वर्तमान में मैं हूँ, 3 साल से 5 साल के पीरियड के लिए यहाँ पर डेपुटेशन पे दिया जाता है।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो अभी क्या क्या काम हो रहा है आपके सेंटर से?
1: अभी अभी वर्तमान में सिलाई का ट्रेनिंग चल रहा है। 31 दिवसीय महिलाओं का सिलाई का ट्रेनिंग चल रहा है।
0: अच्छा, मतलब कि हर विषय पर, जैसे कि खेती बाड़ी, सिलाई, और हमने तो बहुत पहले से ही वहाँ हम जाते थे तो देखते थे बकरी पालन, ये सब चीज का ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर हो रहा है।
1: जी, हमारे वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोसेस जनरल ADP इसमें मतलब ट्रेनिंग होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर पे हम बोलेंगे तो मुख्यतः वेजिटेबल फार्मिंग,
0: हाँ हाँ
1: और कृषि उद्यमी कुमारे हॉर्टिकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, फिशिकल्चर, ये सब है और बहुत सारे। और प्रोडक्ट में जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है वुमेन्स टेलरिंग, एसेंशियल ऑफ सॉफ्ट टॉय मेकिंग और पेपर कवर। अब प्रोसेस में लघु उद्यमी जो फास्ट फूड बोल सकते हैं, सेल फोन रिपेयर, टू व्हीलर और ब्यूटी पार्लर और LMV। ठीक है, जनरल ADP में हमारे वहाँ शॉप कीपर का है, FLCRP, CRPEP और जनरल ADP, ये बैंक मित्र, ये सब की ट्रेनिंग हमारे वहाँ होती है। और RCT में लगभग जो है ना 70 ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन जो है सभी ट्रेनिंग को तो करा पाना एक RCT में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग लगभग जो है ना 30-32 ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: अच्छा, कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है ये?
1: जी मैम,
0: कितने दिनों का ये अभी जो सिलाई
1: सिलाई का 31 दिन का 31 दिवस ट्रेनिंग होते हैं। यहाँ पर आरसेटी में 6 से 2 महीना तक, मतलब 60 दिन तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन का होता है।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो अभी सिलाई का हो रहा है, उसके बाद और भी एक ट्रेनिंग हो रहा होगा।
1: अभी फिलहाल तो सिलाई का एक ही चल रहा है। अभी हम लोग का शुक्र पालन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने का था, लेकिन जो कैंडिडेट कम, मतलब थोड़ा पूरा, मतलब जितना हमें चाहिए था उतना आ नहीं पाए। कम से कम आरसीटी में एक

0: स्टार्ट करने के लिए 25 कैंडिडेट और मैक्सिमम 35 कैंडिडेट की आवश्यकता होती है। अगर 25 से कम होते हैं तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, बैच इनवैलिड होता है। तो इसीलिए हम लोग को कम से कम 25 कैंडिडेट चाहिए होता है, मैक्सिमम 35।
1: तो किस तरह से आप लोग जो भी प्रशिक्षण लेते हैं, लेना चाहते हैं, किस तरह से आप लोग निमंत्रण देते हैं यहाँ का आप लोग?
0: हम लोग JSLPS और जो है ना JSLPS के साथ हम लोग मिलके हम लोग जो है ना EFE करते हैं, जिसमें हम लोग मतलब कैंडिडेट लोगों का मोबिलाइजेशन करते हैं। मैक्सिमम जो है ना हमारे JSLPS हमें बहुत सपोर्ट करती है इसमें कैंडिडेट मोबिलाइजेशन पे,
1: और
0: उसी के माध्यम से।
1: जो JPLS बोले आप, क्या होता है वो?
0: JPL
1: वो कोई संस्था है क्या?
0: JSLPS JSLPS मैडम
1: हाँ, वो एक
0: आवाज आ
1: संस्था
0: रही?
1: है क्या? किस तरह से आप लोग वो किस तरह से वो मैनेज करते हो?
0: हम लोग जो है ना साथ मतलब उनके जो है ना फील्ड के स्टाफ होते हैं, वो तो फील्ड पे मतलब मैक्सिमम लोग तो SHG से जुड़े महिलाएं होती है, तो उनसे कांटेक्ट पे रहते हैं। तो मतलब हम लोग EFE पे भी जाते हैं, प्लस उनके जो स्टाफ है उनका जो SHG का मीटिंग सब होते हैं है ना, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करके जो है ना इनको ट्रेनिंग के बारे में पूरा जानकारी देते हैं। प्लस हमारे स्टाफ लोग भी, हम लोग भी खुद जाके ट्रेनिंग मतलब कैंडिडेट मोबिलाइज करते हैं।
1: जी, देखिए संदीप जी, वैसे तो सरकारी नौकरी जो है सबको नसीब नहीं होता है, जिसका नसीब होता है तो उसका हो ही जाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे गांव के लोग, इतना ही नहीं शहर के लोग भी बेरोजगार हो जा रहे हैं, युवक युवतियां सब। मतलब
0: जी जी
1: कि क्या कारण हो सकता है कि बेरोजगार है अभी भी?
0: देखिए, हमारे पश्चिम सिंहभूम तो आदिवासी बहुल एरिया है, तो यहाँ हम लोग तो थोड़ा मैक्सिमम जो है ना खेती से जुड़े लोग हैं। तो इसीलिए RCT जो है यहाँ पर हमारे एरिया में है, तो मुझे लगता है इनका जो है ना ग्रामीणों को इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो है ना हमारा RCT जो है निशुल्क और आवासीय ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें यहाँ से ट्रेनिंग करके वो लोग जो है अपना स्वरोजगार छोटा मोटा जो बिजनेस है स्टार्ट कर सकते हैं।
1: जी हाँ। अच्छा, जिस तरह से आप लोग कैंडिडेट लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, इसकी उम्र क्या होनी चाहिए?
0: जी मैडम, हम लोग जो है ना मुख्यतः आधार कार्ड, राशन कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये जरूरी डॉक्यूमेंट है।
1: हाँ,
0: और हमारे वहाँ ट्रेनिंग के लिए, RCT में ट्रेनिंग के लिए 18 से 45 साल के जो
1: अच्छा।
0: युवा हैं वो लोग ट्रेनिंग मतलब आवेदन कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। जी,
1: कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है?
0: जैसे मैंने आपको पहले बता दिया मैडम, 6 से 60 दिन का ट्रेनिंग
1: अच्छा
0: प्रोग्राम होता है, अलग अलग ट्रेनिंग का अलग अलग रहता है।
1: जी हाँ।
0: जी
1: और हम हॉस्टल की भी सुविधा है?
0: जी आवासीय सुविधा है, निःशुल्क आवासीय सुविधा है मैडम। यहाँ से यहाँ पर मतलब ट्रेनिंग पीरियड तक वो लोग रह सकते हैं, कि कोई चार्ज नहीं है। जी
1: जैसे कि अभी सिलाई का ट्रेनिंग दी जा रही है, तो
0: जी
1: मतलब कि वहीं पर टीचर वगैरह आते हैं और वहीं पर मशीन भी होगा और सारा चीज आप लोग ही इंतजाम करके देते हैं उन लोगों को, है कि
0: जी
1: नहीं? अच्छा, तो वहाँ जो सब चीज तो आपने कहा निशुल्क ही है ना, लेकिन जो
0: जी
1: सिखाते हैं जो टीचर हैं, अभी जैसे सिलाई टीचर वो आई हुई है, तो
0: जी
1: जो सिखाने वाले कहाँ से आते हैं?
0: ये हमारे रजिस्टर्ड ट्रेनर होते हैं, ये फिलहाल तो हमारे चाईबासा से ही हैं ट्रेनर, लेकिन ये हमारे जो है ना कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ट्रेनर हम लोग ले सकते हैं। जैसे अभी ट्रेलर का चल रहा है, अगर हमारे वहाँ चाईबासा में उपलब्ध नहीं होते, ये रजिस्टर्ड होते हैं हमारे RCT के साथ, अगर यहाँ नहीं होते तो हम लोग जो है ना ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी उनको बुलाते हैं।
1: अच्छा, है मतलब
0: जी
1: कि इसमें फील्ड वर्क भी है आप लोगों का?
0: फील्ड वर्क जी मैम है, जैसे अभी मतलब हाँ हम लोग जो है ना इनको ट्रेनिंग के पीरियड में ही हम लोग इनको फील्ड विजिट भी कराते हैं। ठीक है, बाकी तो हम लोग का फील्ड वर्क अलग हुआ, है
1: अच्छा,
0: ना जी।
1: और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं, तो इस हालत में क्या आप उन लोगों का इंतजार करते हैं कि आप लोग शुरू ही कर देते हैं?
0: नहीं मैडम, हम लोग जो है ना कम से कम 25 कैंडिडेट हम लोगों को बैच स्टार्ट करने के लिए कम से कम 25 चाहिए होता है,
1: हाँ
0: ठीक
1: हाँ जी
0: है। 25 से अगर जो है ना कम हो रहे हैं तो कैंडिडेट हम लोग उस बैच को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मिनिमम मतलब हमारा रिक्वायरमेंट ही है 25 कैंडिडेट का,
1: अच्छा
0: मैक्सिमम मतलब 35, ठीक है।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना संदीप जी कि आधार कार्ड तो सबके पास में होता ही है,
0: जी
1: बाकी डॉक्यूमेंट्स भी होता है, लेकिन राशन कार्ड फिलहाल अभी तो मुश्किल के दौर से भी गुजर रहा है। राशन कार्ड सबके पास में नहीं होने के कारण भी वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं।
0: मैडम, आधार कार्ड तो सभी के पास है, लेकिन राशन कार्ड नहीं होने के कारण जो है ना हम लोग नहीं ले पाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू है। लेकिन मैक्सिमम तो लोगों के पास हमारे मतलब जो भी कैंडिडेट आते हैं आधार क्या बोलते हैं राशन कार्ड रहता ही है। अभी पिछले जो है ना अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से आवासीय और जाति भी अनिवार्य किया गया है, जो हमारे जो पश्चिम सिंहभूम में लोगों के पास मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों के पास नहीं रहता है, तो उस मतलब आवासीय और जाति के नहीं रहने पे हम लोग मुंडा या मुखिया से घोषणा पत्र लेके हम लोग करा सकते हैं। लेकिन जो है ना आधार और राशन कार्ड जो जरूरी है उसके बिना नहीं हो पाएगा।
1: जी, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, यार कास्ट सर्टिफिकेट तो सबके हाथ में है ही, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और जनरल कोटा भी है आपके यहाँ पे?
0: जी जनरल भी कराते हैं मैडम
1: हाँ, अच्छा, उन लोग को भी मतलब कि आप लोग फैसिलिटी देते हैं।
0: जी।
1: अच्छा, ट्रेनिंग हो जाने के बाद तो मतलब कि कितना लाभ हो जाता है उन लोगों को जो ट्रेनिंग लेते हैं?
0: ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग 2 साल तक जो है ना उनका फॉलोअप करते हैं, मींस उनके टच में रहते हैं हम
1: अच्छा
0: लोग। 3 ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके 3 महीना बाद हम लोग फॉलोअप करते हैं कि मतलब जिस ट्रेड से उसने ट्रेनिंग प्राप्त किया कैंडिडेट ने वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग श्योर करते हैं।
1: अच्छा, कभी कभी हमने सुना है कि जैसे कि कोई एक सुअर पालक है जो मतलब कि अपना सुअर का बिजनेस शुरू भी कर चुके हैं वहां से ट्रेनिंग लेकर के, और कभी कभी उनका बिजनेस जो है वो बंद पड़ जाता है, ठप हो जाता है, बीमारियों के कारण भी कभी कभी होता है, मुश्किल दौर से गुजरते हैं वो लोग, तो ऐसी हालत में क्या योगदान आप लोग दे सकते हैं?
0: मैडम ये RCT जो है सिर्फ ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद जो है ना फंड की मतलब जो है ना लोन के लिए हम लोग लोन एप्लीकेशन जनरेट यहीं से RCT से करते हैं, ताकि उनको जो है ना अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सके, है ना। जैसे आपने बोला कि मतलब बीमारी से सुअर मर जाते हैं, देखिए बिजनेस में तो मतलब लॉस लॉस प्रॉफिट तो
1: हाँ,
0: रहता
1: जोखिम
0: ही है,
1: तो
0: ठीक
1: उठाना
0: है।
1: पड़ता
0: हाँ,
1: है। अच्छा
0: तो इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि जो है ना वो अच्छे से यहाँ से सीख के अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, अपना
1: जी
0: काम स्टार्ट कर पाए जी।
1: अच्छा, आपने लोन का नाम लिया, तो लोन आप लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को?
0: लोन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम लोग लोन एप्लीकेशन यहाँ से जेनरेट करके सभी मतलब ब्रांचों को जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है उनको लोन एप्लीकेशन हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उनके शाखा में हम लोग फॉलोअप भी करते हैं, प्लस कैंडिडेट का फॉलोअप भी करते हैं
1: अच्छा,
0: जी।
1: तो उसके लिए क्या क्या ये चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर हम लोन लेना चाह रहे हैं तो?
0: फिलहाल तो लोन एप्लीकेशन तो हमें जो है ना हमारे पास हमने लोन एप्लीकेशन है, प्लस KYC डॉक्यूमेंट मीन्स पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक की कॉपी हम लोग लगा के उनको लोन एप्लीकेशन रेस्पेक्टिव ब्रांच को देते हैं, कंसर्न ब्रांच को जी।
1: तो उसके बाद आप लोग जो जो लोन लिए हैं और जो वहां, तो आप लोगों को जगह भी देखना पड़ता होगा कि किस जगह पर वो अपना दुकान या कोई भी चीज खोलना चाह रहे हो, उनका भी आप लोग निरीक्षण करते होंगे?
0: जी हम लोग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 महीना के बाद हम लोग फॉलो अप करते हैं।
1: हाँ
0: अब आप लोन एप्लीकेशन अगर भेजा गया है ना, उसके बाद हम

0: मैं फॉलोअप किया, लोन सेंक्शन हुआ। तो लोन सेंक्शन हुआ तो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारा गली नहीं, बैंक भी जो है ना उसको फॉलोअप करती है कि ताकि फंड का मिसयूज ना हो बोल के। ठीक
1: अच्छा,
0: है जी।
1: तो आपका मतलब कि ये संस्था जो है आरटीसी
0: शेट्टी
1: बेरोजगार, हाँ, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है कि नहीं? और
0: जी
1: आपको तो ऐसा लग ही रहा होगा कि बहुत ही लाभ मिल रहा होगा,
0: सॉरी मैम।
1: आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या क्या हुआ? हाँ, सही में लाभ हो रहा है उन लोगों को, ये काम वो लोग शुरू कर रहे हैं।
0: जी मैडम, हाँ मुझे तो लग ही रहा है, जब से मैं यहाँ पर पिछले फरवरी से मैं हूँ यहाँ पर, तब से मुझे लग रहा है कि यहाँ जो है आरसीटी जो है ना, यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत अच्छा, मतलब जो है ना एक पहल है, जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके कम से कम जो है ना अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके अपने लाइफ को, लाइफ स्तर, जीवन स्तर को लोग सुधार सक रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो यहाँ से, हमारे वहाँ से ट्रेनिंग लेके मतलब अपना अभी सफल सक्सेसफुल मतलब बिजनेस अपना चला पा रहे हैं।
1: हाँ, जी। और बहुत सारे जो है बेरोजगार लोग लोग जो है वो पलायन भी कर जाते हैं, कहीं कुछ भी नहीं हो पाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्हें
0: देखिए मैडम,
1: कैसे सही दिशा पर लाएं?
0: तो इसीलिए तो आरसीटी का मतलब जो है ना, आरसीटी है ताकि यहाँ से अपना मतलब ट्रेनिंग लेके कुछ यहाँ काम करें, लेकिन पलायन का तो हम लोग जो है ना उसमें हम लोग कुछ रोक तो नहीं पाएंगे, है ना। ये तो सरकार जो है ना इसपे, ये अलग ही ये हुआ है ना, आरसीटी का काम हो गया। काम क्या है कि मतलब बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना स्वरोजगार के लिए। ठीक है, तो हम इसमें जो है ना जैसे गांव गांव में ईएफई करते हैं, उसमें जाके हम लोग जागरूक करते हैं कि आरसीटी में आप आइए, जिस आप ट्रेड में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिसमें आप जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे वहाँ आइए, निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त करिए और अपना बिजनेस आप स्टार्ट करिए, ताकि आप अपना लाइफ को थोड़ा सुधार सको, जो अभी मतलब जीवन स्तर को आप अभी जिस वर्तमान स्थिति में रह रहे हो उससे कुछ अच्छा मतलब सुधार कर पाए आप।
1: जी हाँ, और पढ़ाई लिखाई तो थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए, कि क्यों जरूरी है क्या कि मैट्रिक पास होनी चाहिए?
0: देखिए आरसीटी यहाँ ट्रेनिंग के लिए जो है ना कम से कम अक्षर ज्ञान तो जरूरी है, ये है
1: हाँ
0: ताकि,
1: जी,
0: क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं तो हम लोग उनको नोट भी करना होता है
1: हाँ
0: ना,
1: जी, हाँ
0: तो ये थोड़ा बहुत तो कम से कम अक्षर ज्ञान की तो जरूरी जरूरत ही है।
1: जी हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। शिक्षा, शिक्षा पर भी थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही चाहिए हमारे इलाके के लोगों को, है कि
0: जी मैम, जी।
1: जी। और संदीप जी, एक बहुत बड़ी समस्या है हम बेरोजगार युवाओं के लिए, बेरोजगार ही नहीं सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, वो है नशा पान। तो उस विषय पर आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? अपने तरफ से कोई संदेश दीजिए।
0: वो तो मैं आपको जो है ना नशा पान के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। ये जो है ना बहुत ही मतलब अभी आप जो है ना कोई एरिया में, गांव में भी जाइएगा, ये जो मतलब नशा जो है ना हमारे एरिया में बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे लोग बिगड़ गए नशा पान के कारण, अच्छे अच्छे फैमिली के लोग जो है ना कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है इस
1: हाँ
0: समय, है ना। तो उसको जो है ना क्या बोलूं मैं, इसमें बहुत मुश्किल है इसको मतलब ये से समझा पाना,
1: हाँ
0: क्योंकि जो है ना आप जितना भी बच्चों को समझाएं गलत संगत में पड़ जाते हैं, लेकिन जो है ना हम लोग का यहाँ जो भी ट्रेनिंग होता है, जो भी हमारे कैंडिडेट आते हैं, तो हम
1: हाँ
0: लोग इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं कि जो है ना अपने लाइफ को कैसे सुधारे, नशा से कैसे दूर रहा जा सकता है, कैसे रहना चाहिए। आप यह नशा करके जो है ना आप अपना लाइफ को बर्बाद कर देंगे, है ना। आप अपना गली नहीं, जो ना पूरा परिवार जो है ना आप बर्बाद होते हैं नशा से, तो आपका पूरा परिवार जो है ना मतलब यह
1: बर्बाद
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है जी। तो
0: जी
1: दूर रहना तो बहुत ही जरूरी है संदीप जी,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी जी
1: नशा
0: जी
1: पान ही एक ऐसा चीज होता है कि कोई चीज में आगे बढ़ने देता ही नहीं है वो।
0: जी
1: जी, तो

0: संदीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, धन्यवाद मैडम।
2: बेरोजगारों के लिए टीआरटीसी का योगदान, ये था विषय भेंटवार्ता का, और जानकारी दे रहे थे संदीप बिरुली।

0: चूहे न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना मुख धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: मुतम बुरम सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा मिका
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में पुरी उड़ी ने बागिया तो कि दोनों से यार फी कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे दूर दम गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम तेना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी।
8: इसी के साथ ही हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब आशा पिंगवा को बिता दें। नमस्कार।

अभी आपने सुना फिल्म धुन का ये गीत तलत अजीज के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म किनारा से लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म डैडी का ये गीत तलत अजीज के स्वर में। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म दस्तक से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दस्तक का ये गीत उदित नारायण के स्वर में। इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म धड़कन के इस गीत से, अभिजीत और अलका याग्निक के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म दिल मांगे मोर का ये गीत उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

अभी आपने सुना फिल्म ऐतराज का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एमजी श्रीकुमार की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 और 50 सेकेंड होने को हैं। हम उपस्थित हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची के साथ। जोहार रांची कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता और मेरे साथ हैं
1: आभा।
0: आप सभी को हमारा
1: जोहार नमस्कार।
0: और आभा बताओ कैसी हो?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ। और ये कार्यक्रम जब हम लेकर आते हैं ना, तो हमारे मन में ये बातें चलती हैं कि आज हम अपने श्रोताओं से क्या कुछ शेयर करेंगे, क्या बातें करेंगे, कौन सी जानकारी देंगे।
1: हाँ, और हमेशा की तरह हमारे श्रोता जानते ही होंगे कि इस कार्यक्रम में हम ढेरों जानकारियाँ
0: देते हैं और बीच बीच में हम उन्हें, क्योंकि उन्हें बोरियत ना हो इसलिए उन्हें हम कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाते हैं। और गीत की बात हो रही हो तो बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ आज इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। फिर हमारे पास करने होंगी ढेरों बातें।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित
2: जोहर रांची कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और गीत हमने सुना, गीत के बस एक छोटा सा संदेश

0: भी हमने सुना,
1: हम्म,
0: और अब अपने श्रोताओं से बातें करते हैं कुछ अच्छी बातों पे, कुछ अच्छी बातें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो आप
1: बिल्कुल।
0: बताओ क्या है वो अच्छी बातें जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे श्रोताओं को मोटिवेट करें।
1: तो कहते हैं ना, जीवन जितना सरल रखेंगे सुकून उतना ही ज्यादा मिलेगा, और शिकायतों में अगर उलझे रहेंगे तो दिल सदा परेशान रहेगा। छोड़ दीजिए बीते कल की थकान, नए सपनों को रास्ता मिलेगा। छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए, जिंदगी भर
0: जिंदगी का
1: सफर
0: सफर
1: आसान
0: आसान लगेगा।
1: रहेगा।
0: तो कहने का मतलब बस इतना ही है ना कि जितना नॉर्मल, जितना कैजुअल तरीके से हम अपने रोज की जिंदगी जिएंगे ना, हमारे लिए जीना उतना ही सरल होगा।
1: बिल्कुल
0: और बात करें अगर हम सुकून की, तो सुकून हमें तब मिलता है जब हम बाहरी मतलब बेवजह की बातों में हम उलझते नहीं हैं।
1: हाँ,
0: शिकायतें एक दूसरे की करें ना, या किसी चीज
1: जितना
0: को
1: शिकायतों
0: परेशान
1: को कम
0: हाँ,
1: रखेंगे ना,
0: उतना
1: जिंदगी उतनी
0: जीवन
1: हसीन
0: में
1: होती है।
0: जितनी शिकायतें कम हो ना, जीवन में सुकून उतना ही रहता है। और बात कर लेते हैं हम अपने जीवन के सफर की, रास्तों की। तो जीवन है, कठिन परिस्थितियां आती हैं, मुश्किलें भी
1: बिल्कुल
0: आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम थक जाएं, हम हार जाएं। मन को मजबूत रखिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अपना संबल मजबूत रखिए। जिंदगी बहुत आराम से, आसानी से, जो जिंदगी का सफर है ना, वो कट
1: कट
0: जाएगा।
1: जाएगा।

0: हाँ माँ,
1: मुझे लगता है एक बात मैं तुमसे पूछ रही थी कि जब तुम सवेरे यहाँ आ रही थी स्टूडियो अपने श्रोताओं से बातें करने के लिए, सुबह आना तो बहुत ही अच्छा लगता है और सुबह में इतने सारे कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं हमारे केंद्र से तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन जब रस्ते में तुम आ रही थी उस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा था? मैं सुबह जागी थी इसलिए मैं पूछ रही हूँ।
0: कल जैसा कि बहुत बारिश हुई है तो उस अनुसार सुबह का मौसम तो बहुत ही ठंडा था, मतलब अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और गर्मी का एहसास थोड़ा कम था,
1: मतलब लग रहा था कि अभी गर्मी नहीं है,
0: नहीं
1: लेकिन
0: है।
1: जब मैं आ रही थी
0: अभी तो धूप है ना, काफी धूप है, अभी
1: धूप है और ह्यूमिडिटी है, तो कैसा रहेगा मौसम का मिजाज आजकल में हम अपने श्रोताओं को थोड़ी सी बातें बता देते हैं। बता दें कि झारखंड में संथाल के रास्ते मॉनसून प्रवेश कर चुका है, थोड़ा सा धीरज रखिए, गर्मी बहुत जल्द कम हो जाएगी। पाकुड़ के पाकुड़िया समेत संथाल के कुछ हिस्सों में इसका असर भी दिखा है, कहीं काले घने बादल छाए रहे तो कहीं देर शाम बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग की माने तो एक से दो दिन में मानसून का असर दिखने लगेगा और बताया जा रहा है कि झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में मानसून ने 5 दिन पहले दस्तक दी है और जबकि पिछले साल ये 17 जून को पहुँचा था।
0: और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी हिस्सों में मॉनसून के प्रवेश करने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और सिस्टम जो कह रहे हैं उससे झारखंड में बारिश होने की संभावना तो है ही, साथ ही उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव की ट्रफ बनी हुई है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, झारखंड, बंगाल से बंगाल की खाड़ी तक कायम रहेगा।
1: और बताएं अपने श्रोताओं को कि इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिमी मानसून भी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पूरे हिस्से में, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार के आधे भाग, ओडिशा और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में कायम है, तो अगले 2 से 3 दिनों में ये झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाकी बचे जो क्षेत्र है वहां मॉनसून आ जाएगा। मौसम विभाग की मान ले तो 1 से 2 दिनों में झारखंड के रांची समेत कोल्हान के सभी जिले, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, सिमडेगा, खूंटी आदि जिलों में मॉनसून का प्रवेश हो जाएगा और इसके बाद पूरे झारखंड में इसका प्रवेश हो जाएगा।
0: और आपको पता ही है, आपको बता दें झारखंड में शनिवार को संताल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गुड्डा, साहिबगंज के साथ गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में आंधी और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है
1: और 2 से 3 दिनों में हर हिस्से में इसी तरह की मौसम को आप देख सकते हैं।
0: और जैसा कि मतलब झारखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है तो उसमें अगर देखा जाए तो झारखंड में जो है कायम रहेगा और गर्मी थोड़ी कम होगी,
1: गर्मी कम हो जाएगी। तो गर्मी गर्मी कर रही हो तो तापमान बता देते हैं अपने श्रोताओं को, आज का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अनुमान आज के कर लेना तो बादल छाए रहेंगे, तेज हवा के साथ बारिश होने के कहीं कहीं आसार है, यानी कुल मिलाकर मौसम बेहद सुहाना है, बहुत प्यारा है और खुशी की बात यह है कि मॉनसून अब दस्तक दे चुका है। लोग बहुत परेशान थे भीषण गर्मी से, लेकिन अब और आज के बाद मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और बहुत ही प्यारा हो जाएगा, यूं कहें कि बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा।

0: और अब गाना है बहुत अच्छे अच्छे सुनवा रही हो तुम अपने श्रोताओं को,
1: लेकिन गाने तो आप सुनवा रही है अभी, है ना,
0: हम दोनों मिलकर सुनवा रहे हैं क्योंकि अगर गाने अच्छे नहीं होंगे ना तो कार्यक्रम की खूबसूरती वैसे भी कम हो जाती है। बातें तो बहुत होती हैं, बातें हम करते भी हैं और आज भी करेंगे, और आज हम बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस की, जो हर साल 13 जून को मनाया जाता है।
1: और आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म आनुवंशिक स्थिति, जिसमें त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन की कमी होती है, उससे पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों का जश्न मनाना है और उनके प्रति होने वाले भेदभाव को रोकना और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है।
0: और हम अपने श्रोताओं को बताएं कि पहला रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया 13 जून 2019 को और इसका विषय था स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग, यानी रंगहीनता एक दुर्लभ गैर संक्रामक अनुवांशिक रूप से जन्म के समय मौजूद भिन्नता है, जिसमें बालों, त्वचा और आंखों में मेलानिन के कमी के कारण त्वचा का रंग है ना
1: बदल जाता है
0: जिससे सूर्य और प्रकाश की भेदता होती है, मतलब स्किन को वो ज्यादा प्रभावित करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं या देखते हैं कि जिनका स्किन हमारे स्किन से अलग है
1: हाँ।
0: तो उन्हें खुद में शायद थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है कि हम ऐसे क्यों हैं, मुझ में ऐसे क्या कमी है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, इसलिए ताकि वो अपने आप को भी हमारे जैसा समझे, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, ये अनुवांशिक बीमारी है जिसका इलाज धीरे धीरे आ रहा है सामने और बहुत लोग इससे ठीक भी होते हैं। तो कोशिश ही करना चाहिए कि जो ये अगर इस रंगहीनता से कोई पीड़ित है तो उसे दुखी उदास होने की जरूरत नहीं है, उसे भी उतना ही हक है जितना हम और आप मिलकर अच्छे से जीते हैं, और उनसे भेदभाव करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है। अब ये बात और है कि मेलानिन की कमी उनके स्किन में है तो जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है, तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए आज का दिन जो है मनाया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का दिन है इसे हम सब मिलकर उनको समर्पित करते हैं जो इससे पीड़ित है, और उनमें आत्मविश्वास की भावना जगाते हैं कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रांग रखिए और अपने काम जो करते हैं उसे संबल के साथ करिए, और हम आपके लिए खूबसूरत सा गीत लेकर आए हैं।

0: और आभा, बात कर रहे हैं हम आज के दिन की, तो आज एक और खास दिन है. आज है इंटरनेशनल यंग ईगल्स डे. ये क्यों मनाया जाता है बताओ जरा,
1: तो आपको
0: और कब मनाया जाता है?
1: हाँ, तो हर साल जून के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है,
0: जो कि आज है.
1: हाँ, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य 8 से 17 साल के बच्चों और युवाओं में विमानन और पायलट बनने के प्रति रुचि जगाना है.
0: हाँ, और इस खास दिन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों पर नजर डालें, उद्देश्य पर नजर डालें, तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को उड़ान का पहला अनुभव प्रदान करना और उन्हें विमान के चमत्कारों से परिचित कराना होता है.
1: और इसका आयोजक जो है, इसकी जो पहल है वो एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन द्वारा चलाई जाती है.
0: और इस पहल के तहत वॉलंटियर और प्रमाणित पायलट बच्चों को सामान्य विमानों यानी जनरल एविएशन एयरप्लेन्स में मुफ्त विमान यात्रा का अवसर भी देते हैं.
1: और साथ ही सीखने का मौका भी दिया जाता है. इस दौरान उड़ान के दौरान जो है बच्चों को विमान के नियंत्रण यानी कि कंट्रोल्स और उपकरणों के बारे में बुनियादी जानकारी भी दी जाती
0: तो
1: है.
0: तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी जानकारी भी है कि जो बहुत बच्चे पायलट भी बनना चाहते हैं,
1: हाँ,
0: तो उनके लिए आज का दिन बेहद खास है कि आज अगर वो 8 से 17 साल के आयु में है और इंटरेस्ट है, तो इसके द्वारा जो जिसके जो आयोजक हैं EAA, तो उनके जरिए आप इसमें भाग ले सकते हैं, विमानों के बारे में जान सकते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान सकते हैं. और फिलहाल हम अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवा लेते हैं.
1: बिल्कुल.
0: जो कि ये गीत जो है ना, हवाई जहाज पे ही फिल्माया गया, नहीं बल्कि एक प्यारा सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं और साथ ही शुभकामनाएं देते हैं उन बच्चों को जो पायलट बनना चाहते हैं.
1: हाँ,

रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं तेरा पीछा ना छोड़।

0: और बात आज के दिन की कर रहे हैं आभा, तो आज के इतिहास पर भी एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देती हैं। अगर कुछ दुर्घटना घटी तो उनसे हम सबक लेते हैं, और कुछ अच्छी बातें हुई तो उनसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
1: हाँ।
0: तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि आज यानी 13 जून 1420 में जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था।
1: और सन 1940 की बात करें तो आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई थी।
0: 1993 में आज के दिन ही किम कैम्बेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
1: और 1997 में आज ही के दिन दिल्ली के उपहार सिनेमा
0: एक दुर्घटना घट गई थी, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत लोग घायल भी हो गए थे। और बात कर ले आज के दिन 2002 में एक के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की समय सीमा समाप्त हो गई थी।
1: और 2005 में आज ही के दिन ईरान 2009 के अंत से 25 वर्षों के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने पर सहमति
0: बन
1: जताई
0: गई
1: थी।
0: और आज ही के दिन 2008 में टेलीकॉम मलेशिया ने आइडिया सेलुलर कंपनी की 15% हिस्सेदारी खरीद ली थी। और चीन और ताइवान ने विमान सेवा शुरू करने के संबंध में आज ही के दिन एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज निधन हुआ, जो हमारे बीच से चले गए। आज ही के दिन 2016 में मुद्रा राक्षस भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार थे, उनका निधन हुआ था।
1: 2008 में कीर्ति चौधरी, जो तीसरे सप्तक की एकमात्र कवित्री थी, उनका निधन हुआ था।
0: मेजर मनोज तलवार भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों में से एक थे, उनका निधन यानी 13 जून 1999 को हुआ था।
1: और इसी वर्ष मेजर विवेक गुप्ता, जो महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जाबाज सैनिक थे, जैसे कि आप बताएं,
0: उनका निधन
1: हुआ था। और 1994 में राजकुमार जयचंद्र सिंह, जो मणिपुर के भूतपूर्व 7वें मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था।
0: और आज ही के दिन 1967 में विनायक पांडुरंग कर्मकर भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, उनका निधन भी हुआ था।
1: 1922 में आज ही के दिन नानक भील, जो अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था।
0: रफी उदारत जात 10वां मुगल बादशाह था, जिनका निधन भी आज 1719 में हुआ था। और आज भारत के प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का भी निधन हुआ था। तो इन्हें हम सब को श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है।
1: तो 1994 में दीपिका कुमारी, जो भारतीय महिला तीरंदाज हैं, उनका जन्म हुआ है।
0: और भारतीय राजनेता पीयूष गोयल का भी आज जन्मदिन है। साथ ही आज जन्मदिन है बान की मून का, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव थे।
1: और आपको बता दें 1923 में आज ही के दिन प्रेम धवन का भी जन्म हुआ था, जो हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार थे।
0: तो इन सबको हम
1: जन्मदिन की
0: बहुत कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है तो लेकिन जन्मदिन है इनका, तो उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। जो आज हमारे बीच है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जो आज नहीं है उनको हम नमन करते हैं।
1: नमन।
0: और बातें बहुत हो गई है आभा, फिलहाल श्रोता सोच रहे होंगे कि लगातार ये दोनों बातें कर रही हैं, हमारा इनको ख्याल ही नहीं है, तो ऐसा वो ये सोचे। उससे पहले हम उनका ख्याल करते हैं, उनको एक प्यारा सा गीत।

0: और अबा बहुत सारी जानकारी हम अपने श्रोताओं को दे दे, लेकिन आज एक बहुत जरूरी जानकारी अपने श्रोताओं को देनी है। बताओ क्या बात है वो?
1: क्योंकि आज और कल जो है मैपिंग कैंप में जो है वोटर मतलब कार्ड में
0: एसआईआर कार्ड चल रहा है ना हमारे राज्य में,
1: उसको तो, सही करने के लिए मतलब कैंप लगाया गया।
0: 13 और 14 को कैंप लगाया गया है और इसलिए लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता कैंप में पहुंचे, अपना नाम जरूर देखे, और 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है ना उनका नाम इसमें तो जरूर ही होगा।
1: हाँ।
0: और एड ऑन करने के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है, तो उसको भी
1: जो नए मतलब
0: जो नए मतदाता बन रहे हैं
1: उनको जोड़ने का भी काम होगा।
0: तो इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द अपना जो आप बूथ है जहां आप वोट डालने जाते हैं उस बूथ पे जाएं, वहां पे आज और कल 2 दिन कैंप लगाया गया है। कैंप में अपना मतदाता
1: नाम भी चेक करें।
0: साथ ही अगर आपको नया नाम जुड़वाना है तो उसके लिए भी वहां पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए। और कहते हैं ना कि मतदाता होना बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार है और इसी की

0: थ्रू आप अपना वोटिंग भी करते हैं, है ना।
1: और जीवन जो है ना जरूरी है, इसलिए क्योंकि मतदाता जो है जब तक नहीं होंगे देश भी नहीं चलेगा, हम भी नहीं चलेंगे।
0: बिल्कुल हाँ।
1: और देश चलाने के लिए, देश को विकास के लिए आपका वोट जो है ना बहुत कीमती है। तो अपने वोट का ध्यान रखें, और जो कि कैंप लगाया जा रहा है पूरे राज्य में उसमें जरूर जाएं और बाकी लोगों को भी बताएं,
0: हाँ जागरूक करें,
1: जागरूक
0: हाँ।
1: करें। जिनको नहीं पता है अपने घर के आसपास, अगर आपको पता है तो उन्हें बताएं कि आज 2 दिन का कैंप है, आप जरूर जाएं, अपना नाम देखें, BLO वहाँ पे हैं, उन्हें इतना प्रशिक्षण दिया गया है कि वो आपके जो सारी बातें हैं, जो सारी शंका है वो आपके क्लियर कर देंगी, है ना। तो बहुत बातें हो गई और बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं से हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप जाए अपने वोटर आईडी पे,
0: और इसको लेकर के पैनिक भी ना करें।
1: हाँ,
0: बहुत सारे मतलब लोग जो हैं वो नाम नहीं होने की वजह से पैनिक भी कर रहे हैं।
1: हाँ, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पूरे दस्तावेज हैं और आपने अभी तक वोट दिया है तो आपका नाम जरूर मतदाता सूची में होगा। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने भी पहल की है, उन्होंने कहा है कि अपने बूथ पर जरूर जाकर चेक करें। तो आज तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन कल हम लोग जरूर जा पाएंगे। ऐसे तुम आज जा सकते हो यहाँ से फ्री होने के बाद।
0: हाँ, हाँ।
1: तो कोशिश करूंगी, अगर मैं भी जल्दी फ्री होंगी तो मैं भी आज जाकर अपना नाम चेक करूंगी। तो अपने सारे श्रोताओं को हम यही बताना चाहते हैं कि आज जो कैंप लगा है ना मैपिंग के लिए, उस कैंप में जरूर जाएं और अपनी पहचान बनाए रखें। और फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत अपने श्रोता

0: और आभा देखते देखते ना हम अपने कार्यक्रम के बहुत करीब आ गए हैं, यानी समय भी अब बहुत ज्यादा नहीं हमारे पास।
1: मतलब आपके कहने का मतलब है आखिरी पड़ाव पर,
0: आखिरी पड़ाव पे आ गए हम। और इसमें मुझे लगता है ना थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को सेहत के बारे में दे देनी चाहिए, क्योंकि मानसून भी आ गया है और बदलते मौसम में लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। और मुझे इससे पहले तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए, आम खा रही हो?
1: अभी तो फिलहाल बहुत कम खाई हूँ, क्योंकि गर्मी वाला जो फल होता है, मतलब जो आम होता है वो कार्बाइड से पका होता है, तो
0: अब लेकिन
1: नुकसान भी करता है।
0: आम अच्छे आ गए हैं। अब तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने आम का क्यों ऐसा पूछा तुमसे, क्योंकि देखो अभी आम का सीजन है, आम फलों का राजा
1: है। हाँ,
0: पोएम भी सुना है।
1: हाँ, आम फलों का राजा, और देखा जाए तो आम सभी को पसंद होता है, या फिर वो आप किसी भी रूप में खाएं,
0: लेकिन समझदारी से आम को अपने डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। और क्योंकि आम खाने का भी कुछ तरीका है, कुछ नियम है, ऐसा नहीं कि जब मन किया जितना मन किया उतना खा लिए। तो चलो आज हम अपने श्रोताओं को बताएं कि आम खाएं, लेकिन कैसे खाएं और किस तरह से खाएं।
1: हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आम एक शानदार मौसमी फल है, जिसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी और ए होते हैं, और ये पोषक तत्व शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता में इजाफा करते हैं। हालांकि इसे प्राकृतिक रूप से शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए, है ना।
0: और आम के सेवन का जो असर है ना हमारी सेहत पर सीधा पड़ता है, और इसका गलत असर ना पड़े इसलिए समझदारी से आम को अपनी डाइट में शामिल करें। ऐसा नहीं है कि आम बहुत पसंद है तो बहुत बड़ा आम, आधा किलो का एक आम लेके बैठ गए कि मैंने तो एक ही खाया, तो एक नहीं खाया आपने, बहुत खाया है। आम में शुगर होता है, तो एक छोटा आम अपने डाइट में आप रोज खा सकते हैं।
1: और आपको पता है एक छोटा आम या एक कप कटे हुए आम में करीब 100 कैलोरी और 25 ग्राम शुगर होता है, और आमतौर पर ये दिन भर में आम की जो मात्रा है वो काफी कम है, मतलब इतना आप ले सकते हैं।
0: हाँ, इतना खा सकते हैं आप, जिसमें और आम को अकेले खाने के बजाय हो सके तो दही, मेवा, ओट्स के साथ खाएं। और आजकल तो मैंगो शेक बहुत सारी चीजें बनती हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और क्योंकि आम खाने के बाद ना पेट बहुत लंबे समय तक भरा रहता है, और इससे शुगर की मात्रा में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होता। कहा जाता है ना कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आम, अगर आपको शुगर है तो आम खाइए, या तो सुबह नाश्ते में या दिन में, रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे शुगर की मात्रा अनियंत्रित हो सकती है।
1: हाँ, और अगर आप दोपहर या रात के खाने के साथ अगर आप आम खा रहे हैं तो अपनी थाली में कोशिश करें कार्ब्स जो है, जैसे चावल या रोटी की मात्रा थोड़ी कम लें। हाँ, जिसकी वजह से डायबिटीज के मरीजों को जो है डॉक्टरी सलाह दी जाती है कि मतलब बोला जाता है कि आम का भी सेवन करना दिन में आपके लिए
0: सेहतमंद होता है। आम खाने से पहले उसे 2 घंटे पानी में डालकर रख दीजिए। ऐसा करने से आम में मौजूद फाइटिक एसिड निकल जाता है, जो शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही डंठल से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ भी जो होता है ना, वो साफ हो जाता है। अगर वो रहा तो चेहरे पे लग गया तो उससे आपको दाने आ सकते हैं। तो आम मौसम का राजा है फलों में, और आम आ चुका है और अब बारिश भी शुरू हो गई है, तो इसलिए
1: मात्रा में आप खा सकते हैं, चाहे किसी भी
0: फॉर्म में खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए एक छोटा आम रोज खाएं, तो आप इसे हर दिन खा पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: और मुझे लगता है कि देखो अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है,
1: क्यों ना आखिरी में एक गीत और सुन
0: लेते हैं और अपने श्रोताओं से विदा भी लेते हैं, और कहते हैं
1: जोहार नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में हम बहुत ही खूबसूरत से आपकी पसंद के गीत लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय सेना को समर्पित ये गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: ஸ்வயம் இனி கட்டுப்படை பாரதிய சேனா.
1: आपकी पसंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए सबसे पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म कभी कभी से। इस गीत को गाए हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने, गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई है खयाम ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म कभी कभी का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओ, अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म सिलसिला से। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने। गीत के बोल लिखे थे हसन कमाल ने, धुन बनाई थी शिव हरी ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप थे इंदिरा बिहार रायगढ़ से, अकरम नूर जहां, डब्लू नूर जहां, सईद नूर जहां, वसीम नूरजहां, वली उल्ला नूरजहां। राजनंदगांव से आप थे याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। आप सबने अपनी पसंद पर सुना फिल्म सिलसिला का यह खूबसूरत सा गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म खानदान से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीत पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जय बाबा बैजनाथ धाम से, मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी प्रतिज्ञा। साथ ही आप हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी से आप हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से आप हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आजमा बेलदार। अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म खानदान का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बम्बई का बाबू से। इस गीत को गाए हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। धुन बनाई है एसटी बर्मन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतक बीरक, मीका बीरक। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म बम्बई का बाबू का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म वॉरेंट से। इस गीत को गाया किशोर कुमार ने, गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर रहे, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस कांस गवहानकर, बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं शैलेश गवहानकर, श्रीमती वैशाली गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर और कुमारी ध्वनि गवहानकर परी। साथ ही आप हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, नाज प्रवीण और चांदनी नाज। अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म वॉरेंट फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। गृहलक्ष्मी में आज चर्चा होगी सोशल मीडिया और एआई से प्रभावित होता सामान्य जीवन। साथ ही गीतों भरी कहानी आप सुनेंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव पांडे की और इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी रेडियो सखी राखी शर्मा।

बहनों नमस्कार। हर लम्हा आपके होठों पर मुस्कान रहे, हर गम से आप अनजान रहें, जिसके साथ महक उठे आपकी जिंदगी, हमेशा आपके साथ वो इंसान रहे। तो बहनों स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। साहित्य और संगीत से सजे आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी राखी। आज का ये सफर बहुत ही सुंदर होने वाला है बहनों, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और बड़ी फुर्सत से हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। वैसे तो बहनों एआई और सोशल मीडिया के इस दौर में आकाशवाणी के कार्यक्रमों से इस तरह जुड़े रहना बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात लगती है हमें, और आप इस तरह से जुड़ी रहती हैं, इससे हमारा उत्साह बहुत ही बढ़ जाता है और हम हर दिन आपके लिए कुछ नया कुछ अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। एआई ने जहां एक ओर हमारा जीवन आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर हमारी जो सृजनशीलता है उसको कम किया है। सब कुछ जब एक क्लिक पर मिल जाए तो इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ही करे, है ना बहनों? ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एआई केवल विज्ञापन या कथाओं और फिल्मों का विषय लगता है हमें, पहले ज्यादा लगता था लेकिन अब ये इतना सहज हो गया है हमारे लिए कि हम इसे अपने जीवन का अपनी दिनचर्या का अंग बना चुके हैं। हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैंकिंग सेवाओं, ऑनलाइन खरीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक जो है सोशल मीडिया की पहुंच हो चुकी है। इंटरनेट के माध्यम से सारा कुछ हमारे लिए आसान हो गया है। एआई हमारी सहायता करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऑनलाइन शिक्षा में यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो रोगों की पहचान और उपचार को भी अधिक प्रभावी बना रहा है। तेज है, सरल है और सुविधाजनक भी है। इससे समय की तो बचत होती है और साथ ही साथ कई जटिल समस्याओं का समाधान भी हम पा लेते हैं, लेकिन ये कहीं भी इंसानी दिमाग की बराबरी

नहीं कर सकता है बहनों, क्योंकि जब एआई नहीं था तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आविष्कार हुआ, इतनी सहजता से बहुत सारे काम हुए जिसकी कल्पना करना मुश्किल था। कई बार क्या होता है कि हमारी निजता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिसके लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन बहुत ही समझदारी और विवेकपूर्ण तरीके से, और साथ ही साथ अपनी जो सृजनात्मकता है उसे कभी भी कमज़ोर न पड़ने दें। आप लिखें, पढ़ें और अपनी बुद्धि विवेक से भी सोचें। तो चलिए बहनों, बातें बहुत सी हैं और फिर हमें कहानी भी सुनवानी है आपको, तो उससे पहले लेते हैं कुछ विराम।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों, आपके ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी राखी। और जैसा कि हमने वादा किया था कि आज का कार्यक्रम साहित्य और संगीत से सजा है, तो उस वादे को निभाते हुए आइए सुनते हैं कहानी और चलते हैं साहित्य की दुनिया में। आज की कहानी का शीर्षक है मीठे बोल। आलेख और वाचन राखी शर्मा का, जी हाँ, जो अभी आपसे मुखातिब है। ससुराल की दहलीज पर खड़ी पल्लवी के मन में एक साथ कई भाव आ रहे थे। प्रियतम से प्रथम मिलन का रोमांच, जेठ जेठानियों के प्रति थोड़ा डर, थोड़ी घबराहट, किस रिश्तेदार से कैसे बात करूंगी, इतना बड़ा संयुक्त परिवार, सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती और पिता के कहे गए शब्द, देख बेटा, अब तो सिर्फ हमारी नन्ही परी ही नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार पत्नी और बहू की भूमिका भी निभानी है तुझे। परिवार को समेटकर रखना, कोई ऐसा काम न करना जिससे किसी का दिल दुखे, सबसे मीठे बोल बोलना। अपनी सासू माँ के प्रति तो पल्लवी आश्वस्त थी जब वो शादी के पहले उसे देखने आई थी, तब से ही उनके निश्चल हृदय को समझ गई थी पल्लवी। सहज प्यार, ऐसा लगा जैसे बिन माँ की बेटी को माँ मिल गई हो। जब सासू माँ ने उसे गले लगाया और प्यार से उसका माथा चूमा था। रस्मों रिवाजों के बीच सबने नई बहू का स्वागत बड़ी गर्माहट के साथ किया। जिठानियां ढाल की तरह खड़ी रहीं ताकि पल्लवी के किसी बात पर कोई भी रिश्तेदार उंगली ना उठा सके। हर गलती से उसे बचाया गया। हंसी ठिठोली के बीच दिन बीता और अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़कर रात भी बड़ी सुहानी रही। राकेश ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उसे अपने जीवन में स्थान दिया था।

दो ही दिन में पल्लवी ने महसूस किया कि तमाम प्यार दुलार के बीच भी घर का माहौल थोड़ा बोझिल सा है। आंगन में एक दीवार है और जिठानियों का चौका अलग है। पति राकेश यूं तो बड़े अच्छे हैं, अच्छी सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, सबके लिए मन में प्यार भी है शायद, लेकिन बोलते थोड़ा कड़वा है। भाई भाभियों से हंसकर बात करते हुए कभी नहीं देखा। आठवां दिन है आज ये ससुराल में। रसोई घर में लगी है पल्लवी। अचानक कुछ तेज आवाजें सुनकर वो चौंकी। रसोई घर की खिड़की के बाहर झांका तो राकेश की तेज आवाज आ रही थी, साथ ही कुछ और अस्पष्ट सी आवाजें भी थीं। शायद जेठ जी भी बोल रहे थे। वो बदहवास सी गैस खुला छोड़कर ही दरवाजे की तरफ भागी। तभी काम वाली बाई अनीता दीदी ने रोका, बहू, बहू जी बाहर कहां जा रही हैं? पुलिस, दारोगा सब आए हुए हैं बाहर। अनीता दीदी, ये राकेश जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? दीदी पता कीजिए ना, किस बात पर झगड़ा हो रहा है और किससे? पल्लवी ने बेचैन होकर कहा। क्या पता?

0: करो बहू जी, बड़े भैया और राकेश भैया के बीच कुछ जमीन जायदाद का झगड़ा है। पुलिस भी आ गई है और वकील साहब भी। अब तो घर की बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। बहू जी, मैं बहुत दिनों से इस घर में काम कर रही हूं। मुझे पता है भाइयों के बीच में प्यार है, लेकिन बाहर का कोई आदमी राकेश बाबू को भड़काता रहता है, अनीता दीदी कह रही थी। पल्लवी भागकर सासू माँ के पास गई। वो रो रही थी। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो सुना था कि बाबूजी के स्वर्गवास के बाद बड़े भैया ने ही राकेश को पढ़ाया लिखाया है, फिर राकेश ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं उनसे? क्या बताऊं बहू, राकेश दिल का अच्छा है पर कान का कच्चा, दूसरे दुष्टों के बहकावे में आ जाता है और ऐसे ही करता है। जबान वैसे भी मीठी नहीं है इसकी, लेकिन झगड़ा भी करता रहता है। मेरा बड़ा बेटा सीधा है, छोटे भाई को मानता है। एक बार वो प्यार से बोल दे तो जान न्योछावर कर देगा, लेकिन उसका दिल दुख जाए तो बहुत नाराज हो जाता है। माँ जी, आप रोइए मत, मैं हूं आपके साथ। अब पल्लवी सारी परिस्थिति समझ चुकी थी। पूरी रात राकेश भी बेचैनी से करवट बदल रहे थे। कोई सोया नहीं घर में। राकेश का रुख नरम था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और कोई आश्वासन भी नहीं। पल्लवी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसे पता है इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। राकेश ने शादी के पहले सगाई के बाद कहा था उससे, पल्लवी, मेरा तुमसे एक वादा है कि मैं तुम्हें एक ऐसा परिवार दूंगा, एक ऐसी दुनिया दूंगा जहां सिर्फ प्यार ही प्यार पलता हो। शायद अब वो समय आ गया है जब पल्लवी राकेश को उसका वो वादा याद दिलाए।
1: दूर गगन की छाव में

सुबह हाथ में कुछ लिए पल्लवी जेठ जी के दरवाजे पर खड़ी थी। भैया, भाई अचकचा से गए। अरे आओ बहू, बाहर क्यों खड़ी हो? भाभी ने बुलाया, लेकिन भैया उठकर वहां से चले गए अपने कमरे में। पल्लवी बिना कुछ बोले चुपचाप उनके पीछे चल दी। बड़े भैया अपने सर पर हाथ रखे सोफे पर बैठे थे। पल्लवी चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ गई। बड़े भैया, मैं आपसे उम्र ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में बहुत छोटी हूं। आपके घर में नई आई हूं। घर के मामले में मेरा कुछ बोलना छोटा मुंह बड़ी बात होगी, फिर भी बोलने की धृष्टता कर रही हूं, क्षमा करेंगे मुझे। भैया, राकेश ने बताया था कि बाबूजी के जाने के बाद पिता की तरह आपने सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपने सुखों का त्याग करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, अपने शौक आराम में कटौती करके उनकी हर जरूरत पूरी की। फिर आज ये विवाद क्यों भैया? हमारे लिए जमीन के किसी टुकड़े से ज्यादा आपका प्रेम, आशीर्वाद और संरक्षण महत्वपूर्ण है। भैया, मैंने माजिद से मांगकर प्रॉपर्टी के कुछ कागजात लाए, आप उन्हें स्वीकार कीजिए। इसमें राकेश के सिग्नेचर भी हैं। भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए सिवा अपने परिवार की सुख शांति के। कृपया ये विवाद रोक लीजिए। पल्लवी हाथ जोड़े घुटनों पर बैठी थी, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। भैया की आंखें भी भीग गई। नहीं बहू, राकेश तो मेरे बेटे जैसा है, मैं इन कागजात का क्या करूंगा? इस जमीन पर तुम दोनों अपनी नई गृहस्थी शुरू करो, नया घर बनाओ। मेरे लिए तो बाबूजी का यह पुराना घर ही ठीक है। अब घर की बात बाहर नहीं जाएगी बेटा, तुम निश्चिंत रहो, भैया ने पल्लवी के सिर पर हाथ फेर कर कहा। जैसे ही पल्लवी पलटी तो देखा माँ जी के साथ राकेश भी आ गए हैं और सर झुकाए खड़े हैं। अरे रिंकू,

बाहर क्यों खड़ा है? तुझे कोर्ट से परमिशन दिलवाना पड़ेगा क्या मेरे पास आकर बैठने के लिए? अचानक राकेश भाग कर आए और बड़े भैया के पैरों के पास बैठ गए। भैया मुझे माफ कर दो, मेरी जहर जैसी कड़वी बोली ने ही सब बर्बाद कर दिया। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, तुझे एहसास हो गया ना अपनी गलती का, अब सब संभल जाएगा, माँ जी ने आंखें पोंछते हुए कहा। परिवार में मीठी बोली का महत्व जानना जरूरी होता है। आज पल्लवी की मीठी बोली और सुंदर व्यवहार ने एक अनर्थ होने से बचा लिया। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। पल्लवी को महसूस हो रहा था कि राकेश की कड़वी बोली के घाव ने पूरे परिवार के हृदय को जो छलनी किया था, उस पर अब मरहम लग चुका है। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसने अपने हाथ जोड़े। आज रात का खाना सबने एक साथ खाया। बोली और व्यवहार की मिठास ने भोजन को सुस्वाद कर दिया था। राकेश ने बड़े प्यार से पल्लवी को देखा, उन नजरों में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि धन्यवाद भी था।

तो बहनों, ये थी कहानी मीठे बोल, आलेख और वाचन राखी शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की। और इसी के साथ अपनी सखी राखी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

Lakshmi. श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी अपनी दोस्त राखी शर्मा के साथ। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता संस्कृत भाषा में सुविचार और सुक्तियां। वार्ताकार है मनोज कुमार मिश्रा, प्रस्तुति सहयोग है उदेश कुमार का और प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: निजी प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सुक्तियाँ। वार्ताकार हैं मनोज कुमार मिश्र।
1: प्यारे श्रोताओं, आज मैं आप सबों को संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सुक्तियाँ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। संस्कृत शब्द दो शब्दों से बना है, सम कृत अर्थात समान रूप से जो भाषा संस्कार सिखाए उसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, पहला वैदिक संस्कृत तथा दूसरा लौकिक संस्कृत। दुनिया की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक इस भाषा की विशेषता रही है कि सभी भाषाओं को सम्यक भाषा का रूप प्रदान करना। इसकी व्याकरण भी सरल और सहज है, इसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है। प्राचीन काल में विद्वान वर्ग सभी विषयों में इसका अनुवाद भावार्थ श्लोकार्थ और दुनिया की अन्य भाषाओं में करते हैं। प्रायः विद्वान वर्ग वेद ज्योतिष गणित आयुर्वेद सभी भाषाओं का अनुभव भारत की विभिन्न भाषाओं में करते थे। आज भी विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वाधिक उपयोगी भाषा है। संस्कृत साहित्य में कथा वार्ता समाचार श्लोक प्रहसन और पंचतंत्र की रचना संस्कृत भाषा में किया गया है। प्रमुख रूप से चार वेद 18 पुराण महाभारत रामायण की रचना सर्वप्रथम संस्कृत भाषा की देन है, जो पूरे संसार में इसे देवों की भाषा कहा गया है। प्यारे श्रोताओं, सर्वप्रथम मैं आपको संस्कृत भाषा में सुविचार के रूप में कुछ इस प्रकार कहना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा गौरवान्वित करने वाला भाषा है। आइए मैं इसे संस्कृत भाषा को अपने शब्दों में गौरवान्वित करूँ। गौरवम संस्कृतम, रोचकम संस्कृतम, शोभनम संस्कृतम, पावनम संस्कृतम, पावकम संस्कृतम, गौरवम संस्कृतम, सुंदरम संस्कृतम, भासते भारते संस्कृतम, संस्कृतम वाच नाम संस्कृतम, पाठनम संस्कृतम, ज्ञापनम संस्कृतम, श्रावणम संस्कृतम, चिंतनम संस्कृतम, वर्तनम संस्कृतम, भारते भारतम संस्कृतम संस्कृतम।

तथा संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम सबों को देव भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस भाषा की मधुरता सर्वव्यापक है। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा में शिष्यगण समूहों को शिक्षित तथा सभ्य नागरिक बनाने का माध्यम संस्कृत भाषा ही रहा है। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा तथा दीक्षा दोनों दिया करते थे। जो आज शिक्षा बच गई परंतु दीक्षा शब्द लुप्त हो गया। जिन बच्चों को पहले पढ़ने में मन नहीं लगता था उसे गुरुजी समूह पंडित विष्णु शर्मा स्वस्ति हितोपदेश की पंचतंत्र नामक पुस्तक से शिक्षाप्रद कहानी सुनाकर बच्चों को विद्वान बनाते थे। उस समय शिक्षा की विशेष महानता थी। लोग विशेष रूप से अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। आज भी हमारा समाज संस्कृत भाषा को देवरूप भाषा मानकर बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रयासरत होते हैं। प्यारे श्रोताओं, अब मैं आप सबों को संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सूक्तियां बतलाना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। आलस्य कुतो विद्या, विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। भावार्थ इस प्रकार है, जो आलस्य करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकता, जो निर्धन है उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति असंभव होती है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रेपो नास्तु दमशमो बंधो कृतवायंग नावशीदति। इस प्रकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसमें बसने वाला आलस्य ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है, जो हमेशा उसके साथ रहता है। इसलिए वह दुखी नहीं रहता, उसे पछताता कभी नहीं रहता। चंदनम शीतले लोके चंदनामपि चंद्रमा अचंद्रनामा अर्थ्यर्था शीतला साधुर संगति। चंदन को संसार में सबसे शीतल लेप माना गया है, लेकिन कहते हैं चंद्रमा उससे भी ज्यादा शीतलता देता है। लेकिन इन सब के अलावा अच्छे मित्रों का साथ सबसे अधिक शीतलता एवं शांति प्रदान करता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो उन्नति दिशाति पापात्मा करोति, चेतः प्रसादयति दीक्षो तनोति कीर्ति, सत्संगति कथ किम न करोति पूषाम। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार की गई है कि अच्छी संगति जीवन का आधार है। अगर अच्छे मित्र साथ हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। अच्छी संगति से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, पापी दोष मुक्त हो जाता है और यह सभी दिशाओं में फैलता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, अव्याधितम अस्योषधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। परदेश में विद्या मित्र के समान होता है, घर का मित्र पत्नी कहा गया है, तथा रोगी का मित्र उसका दवा औषधि है, तथा मृतक पुरुष का मित्र उसका धर्म है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मेहनत करने से कार्य पूर्ण होते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं। जैसे हिरण कभी भी सोते शेर के मुख में नहीं समा पाता, उसे शिकार करना ही पड़ता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुहन पुहन पुनरपि प्रतिहण्यमाना प्रारब्धस्य मुक्त मना जना न परित्यजन्ति। इस श्लोक का भावार्थ है, महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि विघ्न के भय से निम्न कोटि के लोग कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते, मध्यम श्रेणी के लोग कार्य आरंभ तो कर देते हैं लेकिन जरा सा विघ्न आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं, और उत्तम श्रेणी के लोग विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते, अर्थात उसे पूर्ण कर ही छोड़ते हैं और सफलता प्राप्त कर चैन की सांस लेते हैं। इसलिए हम मनुष्य को विपदा की घड़ी में समय का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जीवने यस्य जीवन्ति मित्राणि मिष्टा स्वमन्धा, सफलम जीवितम तस्य च आत्मार्थे को न जीवति। प्रस्तुत श्लोक
का अर्थ है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जन्म उसी का सफल होता है जिसकी वजह से भाई बंधु इष्ट मित्र दोस्त और सभी लोग जीते हैं। कार्यम पुरुषाकारेण लक्ष्यम संपद्यतः, दृढ़ संकल्प या निश्चय करने से कार्य पूर्ण हो ही जाता है और सफलता या लक्ष्य की प्राप्ति

जाती है। भवतः लक्ष्यम भवतः जीवनम अस्ति, तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा जीवन है। आत्मयतो बुद्धि विनाशो, बुद्धि और विनाश दोनों अपने ही हाथों में है। कालाकीतम कार्यम साधियेत, समय की कीमत समझने वाला निश्चय ही अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। सजायतेन जातेन याति वंश समुन्नितम परिवर्तने संसारे मृतः को वाणा जायते। भाग्येन गंतव्य लक्ष्यम भवतम पुरस्सतः स्वे कुटुम्बे सदाजेतम वैरम भवतो यादृशम। प्रस्तुत श्लोकांश नीति सत्कम पाठ से ली गई है। भावार्थ यह है कि सही रास्ते जाना चाहिए, लक्ष्य कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन हमारे परिवार में ही हमें रहना चाहिए। छिन्दता भयात च मा गच्छतु यतः ये निंदति लक्ष्यम प्राप्त मात्रेण मतम परिहर्तते। लक्ष्य प्राप्ति के बाद निंदा करने वालों की राय बदलने लगती है, इसलिए निंदा के डर से लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। वक्रितुतम सुंदरम यस्साकृति यस्स सुवत्सले लक्ष्यम न सर्वकार्येषु सवे वकीलम प्रीस्ते। प्रस्तुत श्लोकांश का भावार्थ है कि जिसमें ये तीन गुण होते हैं, लक्ष्य, कीर्ति और वक्तृत्व, वह सचमुच में अधिवक्ता कहलाता है। मादकता न विनश्यन्ति मक्तयः वीतक्षणः मदाक्तानां तु मानुषे सफलं जनवः पांडवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, समस्त आसक्ति का त्याग करते हुए सफलता और विफलताओं समान भाव लेकर सारे कर्मों को करो, ऐसी समता ही योग कहलाती है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पक्ष विषाणहीना तृणम न खादन नपि तदमस्त भाग देयम परमम पशुनाम। अर्थ, जो व्यक्ति साहित्य संगीत तथा कला से निहित है वह साक्षात पशु के समान है, पर घास ना खाकर सिंह ना पाकर इस संसार में मनुष्य होकर भी पशु के समान बिना खुर वाला जानवर होकर विचरण करते हैं। अर्थात जीवन उसी का सफल है जो साहित्य संगीत तथा कला से परिपूर्ण होकर संसार में सम्मान पाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने किम् दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी मानव खुश हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को मीठी वचन बोलना चाहिए। पीबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ स्वयमेव न खादन्ति फलानि वृक्ष नादन्ति स्वयं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीता, वृक्ष अपना फल स्वयं न खाता, इस संसार में ये लोग दूसरों के काम आते हैं, अर्थात ये सब दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। सुभाषित रत्ना परह श्लोका अनेक कवियों द्वारा रचित तथा अज्ञात पूर्वक श्लोका का संग्रह है। इसमें प्राय 10,000 छोटे बड़े श्लोक हैं। मृक्ष कटिकम शूद्रक द्वारा रचित 10 अंकों का सामाजिक नाटक है, जिसमें दरिद्र किंतु कभी संपन्न स्थिति में रहे और वानिका जी भी ब्राह्मण, चारुदत्त तथा मनिका वसन सेना की प्रेम कथा है। इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था तथा निरंकुश राजतंत्र का चित्रण है। नीति सत्कम भर्तृहरि रचित 100 से अधिक सरल तथा नीति विषयक पदियों का संग्रह है। इसमें मूर्खों की असाध्यता, विद्वानों के महत्व, धन की शक्ति और मनस्विता विषयों पर प्रकाश डाला गया है। भामिनी विलास संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट कवि तथा काव्य शास्त्री आचार्य पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित अस्फुट मुक्तक पद्यों का संग्रह है। इसमें 4 भाग विलास हैं, अन्योक्ति, श्रृंगार, करुण तथा शांत। परम विलास में कवि ने सिंह, हंस, कमल, मधुकर, चंदन, मेघ, समुद्र आदि को लक्षित कर सुंदर तथा भावपूर्ण अन्योक्ति दी गई है। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा नीति कथाओं की श्लोक लोकप्रिय पुस्तक है। इसकी 43 कथाओं में 25 पंचतंत्र से ली गई है। इसके 4 भाग हैं, मित्र लाभ, सुंदर योग, विग्रह तथा संधि। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा का आदि काव्य है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है। वेदाल पंचविंशति अत्यंत प्राचीन लोक कथाओं का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में इन कथाओं का प्राचीनतम रूप क्षेमेंद्र की बृहत काव्यात्मक और सोम

0: दीप की कथा साहित्य में मिलता है।
1: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था संस्कृत भाषा में सुविचार तथा सुक्तियाँ। वार्ताकार थे मनोज कुमार मिश्र।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण, प्रस्तुति सहयोग था उदेश कुमार का, प्रस्तुति गौरव पांडे के। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहला गीत हमने लिया है फिल्म अकेले हम अकेले तुम से। इस फिल्म के गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने और इस गीत को गाया है उदित नारायण और आदित्य नारायण ने।

जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल है।

बचना ऐ हसीनो इस फिल्म के गीत को लिखा है अन्विता दत्त गुप्तान ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने और इस गीत को गाया है के और शिल्पा राव ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म बैंग बैंग से इस गीत को गाया है। ऐश किंग शिल्पा राव और शेखर रविजयानी ने, और संगीतकार हैं विशाल और शेखर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नया कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, कहा देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कोल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विज्ञान, अंतरिक्ष, विनिर्माण और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में देश के युवा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में उभरने में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने नवाचार और युवा नेतृत्व वाले विकास को नई गति दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण है।
1: तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। देश की जनता का विश्वास, भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नागरिकों और व्यवसायियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मोदी सरकार के कार्यकाल को 12 साल बेमिसाल बताते हुए आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की।
2: मोदी जी के 12 वर्ष में बहुत सारे योजनाएं ऐसे चल रहे हैं जिसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे कि गरीबों के लिए पीएम आवास योजना और ये योजना चला है, आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीबों को इलाज के लिए योजना हो रही है, उसमें काफी लोग आयुष्मान भारत से लाभ ले रहे हैं। उसके बाद पीएम किसान योजना जिसमें हर साल किसानों को 6000 रुपए का अनुदान राशि दिया जा रहा है, इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह बहुत सारा योजना भी चल रही है।
0: असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिमडेगा जिले ने जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर इतिहास रच दिया है। झारखंड में यह मुकाम हासिल करने वाला सिमडेगा पहला और अग्रणी जिला बन गया है। जनगणना निदेशालय ने उपायुक्त कंचन सिंह के नेतृत्व में मिली इस उत्कृष्ट सफलता की सराहना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 29 जून को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में JSSC से चयनित 1018 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए की गई है। सरकार का लक्ष्य सहायक आचार्य के कुल 26,000 पदों को तेजी से

0: कर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता तीन बच्चों का सुराग लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज शाम शहर में मशाल जुलूस निकालेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रोश जताया है।
1: कैबिलम तीनों बच्चों की बरामदगी हो, मतलब बात होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं धुरुआ मंडल के अध्यक्ष और महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि कल शाम में 6 बजे उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय। शादियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है।
0: रांची नगर निगम ने 30 जून तक 50 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 32 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। उपनगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि 30 जून तक एकमुश्त टैक्स भुगतान करने पर नागरिकों को 10% तक की छूट दी जा रही है। गिरिडीह पुलिस ने जिले में गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की त्वरित व सटीक जाँच के लिए विशेष जाँच सेल का गठन किया गया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह विशेष टीम हत्या, लूट और महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों की वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर तफ्तीश करेगी।
2: इन्वेस्टिगेशन सेल हमने यहाँ पे बनाया है अलग से। एक सेल जिले में काम करेगी, दूसरा कोई महुआ अनुमंडल में काम करेगी। जिले की सेल सभी से कोऑर्डिनेट कर वैसे केसेस की सूची इनके पास रहेगी और वो पूरी टीम रहेगी जहाँ पे केस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे उसका डिटेक्शन किया जाएगा। उसको हर तरह की संभव सहायता दी जाएगी जिला से ताकि उसका अतिशीघ्र उस केस का मतलब डिटेक्शन कर पाए।
0: जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशु कर्मकार सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, जिंदा गोलियां और खोखे बरामद किए गए हैं।
3: पुलिस अधीक्षक को महोदय के निर्देशन पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कदमा थाने की टीम द्वारा उसमें काम शुरू किया गया। तो ये घटना छापेमारी करने के लिए टीम गठित थी, उसके द्वारा कार्य शुरू किया गया और सती घाट और खरकई नदी के किनारे से 2 लोगों को पकड़ा गया। इस मामले में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई थी देसी पिस्टल वो बरामद कर ली गई है और भी कुछ चीज पर ताश मारती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
0: उत्तर प्रदेश के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक कार और ट्रक के बीच में हुई आमने सामने की भीषण टक्कर में पलामू जिले के मेदिनीनगर के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज जारी है। सभी डेहरी में बारात में शामिल होने के बाद किछौछा शरीफ से वापस लौट रहे थे। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून ने संताल परगना के रास्ते दस्तक दे दी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुल्हान और संताल क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों के भीतर मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। इधर रांची में आज दोपहर गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। एसोसिएशन ने उनके निधन को भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने मनु भाकर जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी देश को दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नए कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, कहा देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कुल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह, जिनसे हम सुनेंगे चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज में ये गजल। बोल लिखे हैं मलिक कोमनाम ने, धुन बनाई है भूपेंद्र सिंह ने। कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाय इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त, और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार

0: इस स्कीम के तहत क्या है, इसमें ये कहा गया कि जितने भी जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, डालसा है, डालसा लेवल पे एक जिला स्तर पे एक डाउन यूनिट बनाने की बात है। तो डाउन यूनिट क्या होगा, तो डाउन यूनिट होगा उसमें कुछ उनके जो मेंबर्स है उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे डाउन यूनिट में जो जिला के जो प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जो होते हैं उनके चेयरमैन होते हैं, उनके अलावे अन्य उसमें जुडिशल ऑफिसर भी होते हैं जो पॉक्सो संबंधित या फिर एनडीपीएस के केसेस वगैरह जो जज साहब देखते हैं वो भी उनके मेंबर होते हैं। उसके अलावे पीएलवीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपके डीसी हैं, एसपी हैं, या उनके समकक्ष अगर वो हैं तो, या उनके समकक्ष में एसडीपीओ हो गए, आपके एसडीओ हो गए, तो वैसे लोग इसमें भी। उसके अलावे जो सिविल सर्जन है, मतलब उसके अलावे आपके अदर जो लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, मतलब हर वो व्यक्ति जो नशा संबंधी जो हमारा एक जो लोगों के बीच में एडिक्शन है या ड्रग्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, तो कैसे हम उसको इरेडिकेट करें, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे हम प्रॉपर रिहेबिलिएट करें, करके एक डाउन यूनिट बनाएगा। और इनका काम है कि ये प्रॉपर डायरेक्शन दे लोगों पीएलवीज के माध्यम से, अदर कम्युनिटी जो मतलब सोशल वर्कर्स हैं एनजीओज के माध्यम से, कि हर उस जगह पे पहुंचे जो ज़्यादातर ड्रग एब्यूज एरिया हो, और उस एरिया में जाकर वहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई करे कि उसमें बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, वृद्ध हों, घरों पे भी जाकर देखना है कि कहाँ पर नशे का मतलब ज़्यादा यूज करने से वहाँ के घर की जो आर्थिक स्थिति या फिर वहाँ का वातावरण है खराब है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद, पहला हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका जो है प्रॉपर काउंसलिंग किया जाए कि क्यों नशा हो रहा है। अगर जरूरत पड़े तो उनको नशा मुक्ति केंद्र पे भेजने की बात की गई है, नशा मुक्ति केंद्र भेजना, प्लस उनको जो मेडिकल असिस्टेंस उनको मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है जिनको लग रहा है कि ड्रग्स एब्यूज है और किसी तरह का लीगल असिस्टेंस चाहिए, कोर्ट में जाकर अगर किसी पर्टिकुलर केस, मतलब ड्रग्स से संबंधित केस है, उसके माध्यम से अगर कोई कोर्ट में जाकर बातों को रखना है, तो अगर उसमें लीगल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग फ्री लीगल एड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब हम सारा उनको वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, मेडिकल असिस्टेंस से, साइकोलॉजिस्ट के माध्यम, साइकेट्रिस्ट के माध्यम से जब हम उनको मदद पहुंचाते हैं, उसके बाद हमको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन का सोचते हैं। रिहैबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें डाउन स्कीम में रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो रिहैबिलिटेट करने के लिए उनको हम कुछ भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह से उनको जोड़ा जाए, उसको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स वगैरह उनको दिया जाए, उनके नशा संबंधी क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और भी क्या चीज़ें, लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में उसको जोड़ा जाए ताकि उन सब चीज़ों से वो बाहर आए। उसके अलावा डाउन स्कीम में है कि हम प्रॉपर अवेयरनेस कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक हम लोगों के बीच में जाकर इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागृति अभियान हम नहीं चलाएंगे, तब तक लोग इनके जो बैड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए भी जो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, अवेयरनेस गांवों में, पंचायतों में या शहरों तक नहीं है, बल्कि दायरा है कि ये अवेयरनेस इवन जहां पर, क्योंकि आज के डेट में जो ड्रग्स लेने का वो इंजेक्टेबल भी होता है, इंजेक्ट के माध्यम से भी होता है, तो जहां पर मतलब रेड लाइट एरियाज वगैरह है, मतलब सेक्स वर्कर्स लोग भी जहां पर है, तो वहां पर भी जाकर हम लोग का जो कैंप लगना है, वहां समझाना है कि इस तरह के इंजेक्टिव जो है आप ड्रग्स का नहीं लेना, इससे चांसेस ऑफ मतलब जो भी एड्स एचआईवी टाइप के बीमारियां होने के भी चांसेस होते हैं, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के कंप्लीट अगर आप देखें तो डाउन स्कीम बृहद स्कीम है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट इस्टेब्लिश करने के बाद हर एक जगह पे पहुंच रहे हैं और वहां से आइडेंटिफिकेशन करके उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन तक हम लोग उसमें काम कर रहे हैं।
1: जी, तो एक बहुत बड़ा स्कीम है नालसा की डाउन स्कीम, और एक बहुत बड़ा चुनौती भी है पूरे देश के लिए सर, कि एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो युवाओं का हो, वृद्ध का हो, या कोई अन्य वर्ग के भी व्यक्ति हो, नशे के गर्त में यदि वो आ जाते हैं तो अपना तो नुकसान करते हैं और परिवार भी बिगड़ जाता है, और आर्थिक नुकसान वो अलग होता है, बच्चे की पढ़ाई बीच में रुक जाती है और बच्चा इधर उधर भटकता रहता है, और जहाँ उसे नशा सुलभ हो जाता है उस दिशा की ओर वो उन्मुख हो जाता है और फिर गलत राह अपनाने लग जाता है। इस नशे के चुंगल से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, कोई किसी जगह देख लेता है कि ये व्यक्ति नशा कर रहा है या नशे से परिवार बर्बाद हो रहा है, तो कैसे वो संपर्क करे।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज के डेट

0: आप जब भी कभी रेलवे स्टेशन, चौक चौराहे कहीं पर भी जाएं, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नशे में हैं, या फिर अन्य जो भी यूथ यंगस्टर के बीच में ड्रग्स का बड़ा सुनते हैं, ड्रग्स और ब्राउन शुगर, बड़े बड़े नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। वैसी स्थिति में अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनका अपना एक नंबर है 1399, ये टोल फ्री नंबर है। आप कहीं देखते हैं कि अगर ड्रग्स संबंधी कहीं क्राइम हो रहा हो अपने क्षेत्र में, कहीं देख रहे हैं कि ड्रग्स ड्रग्स से रिलेटेड कुछ किसी तरह की हिंसाएं हो रही हों आसपास के क्षेत्र में, कोई ड्रग्स ऐसा कुछ ड्रग्स हो जिसका कल्टीवेशन किया जा रहा हो, तो इस तरह के कोई भी संबंधित ऑफेंस आपके नज़र में आता है, तो आप 1399 में टोल फ्री नंबर है, इसमें कॉल करें, भारत सरकार के नंबर है, उसमें त्वरित उसमें जो है उसमें कार्रवाई होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। उसके अलावे अगर लग रहा है कि कोई नशे के में पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से नशे की में ही धुर्त रहता है, वैसी स्थिति में अगर उसका पुनर्वास करना हो, उसको फिर से रिहैबिलिएट करने की ज़रूरत है, तो वैसे स्थिति में हम कहाँ जाए, किन को कॉल करें, तो उनके लिए भी एक टोल फ्री नंबर है 1-4446, 1-4446। तो ये नंबर पे भी आप कॉल करके जो है, आप कॉल करके अपना जो भी सूचना जो है दे सकते हैं, और इससे जो भी नशा मुक्ति केंद्र संबंधित या भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उसमें जाती हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन का, उनको मेडिकल असिस्टेंस का, उनको साइकेट्रिस्ट के माध्यम से काउंसलिंग का सारा व्यवस्था प्रदान करते हैं। उसके अलावा भी लगता है कि ये ड्रग्स एब्यूज के इस तरह के लोग हैं जिनको कानूनी मदद चाहिए, या फिर इन दोनों में से किसी भी तरह का रिहैबिलिटेशन हो, या फिर उनको कंप्लेन संबंधित कुछ पैसा, तो भी आप नालसा का जो टोल फ्री नंबर है 1-5100, मैं रिपीट करता हूँ 1-5100 पे कॉल करके भी आप अपनी सूचना दे सकते हैं।
1: जी, तो इन तीन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 1-5100, 1-3-99 और 1-4446 पर आप अपनी बात रख सकते हैं
0: बिल्कुल।
1: और सूचना दे सकते हैं, और जहां भी इस तरह की गतिविधियां आपको दिखती है तो आप इस पर फोन कीजिए और इस पर त्वरित गति से कार्रवाई की
0: करवाई
1: जाती
0: जाती
1: है।
0: है बिल्कुल।
1: दीपक जी, क्या आह्वान करेंगे खासकर हमारे युवा साथियों से कि नशे से दूरियां बनाएं और एक स्वस्थ जीवन जीवें और राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर ले जाएं?
0: मैं सबसे पहले एक स्लोगन से स्टार्ट करूंगा, से यस टू लाइफ एंड से नो टू ड्रग्स। मैं सभी युवा साथियों से यही अपील करूंगा कि चूंकि आप देखिए देश का आप सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो भी आज के डेट में यूथ हैं सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और अगर आप नशे का सेवन करते हैं, नशे के गर्त में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश का भविष्य तो बिगाड़ ही रहे हैं, अपने परिवार अपना भी भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि ये नशा छोड़े, क्योंकि नशा से कुछ भी फायदा नहीं। नशा जैसे जैसे आप नशा में बढ़ेंगे तो आप अपने आप को भी बर्बाद कर रहे होंगे, परिवार भी आपके बर्बाद हो रहेगी, समाज भी आपके बर्बाद, और देश को भी आप बर्बाद कर रहे होंगे। इसीलिए इस आह्वान के साथ मैं ही अपील करूंगा कि आप अपने अंदर से नशा को छोड़े, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपना आगे का जो भी है आप बढ़ते, निरंतर बढ़ते रहिए, इससे आपका सर्वांगीण विकास होगा, ना कि नशा करने से।
1: क्योंकि आज के युवा देश के भावी कर्णधार है, और यही युवा देश को आगे ले जाएंगे, राष्ट्र को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का एक अलग नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक कुमार साहू जी, अवर सचिव झालसा, बड़ी अच्छी आपने बातचीत की नशा मुक्त भारत अभियान और नालसा की डाउन स्कीम पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और मित्रों, ये कार्यक्रम ही बात करते हैं। नमस्कार
2: दोस्तों, नशा मुक्त भारत अभियान मादक द्रव्यों की बुराई को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक शानदार प्रमाण है। जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास को शामिल करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से यह पहल नशे की बेड़ियों से मुक्त होकर एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मित्रों, अभी हमने सुना श्री दीपक जी को, जो नशा मुक्त भारत और नालसा की डॉन स्कीम पर लाभप्रद जानकारियां दे रहे थे, और इनसे बातें कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। मित्रों, अब बढ़ते हैं आज के अंतिम चर्चा की ओर। आज हम चर्चा करेंगे नशा से बिगड़ता परिवार, रोको नशा दूर करो निराशा विषय पर, और इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं नशा से बिगड़ता परिवार। मित्रों, परिवार समाज की आधारशिला है। एक सुखी और स्वस्थ परिवार ही एक मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। परिवार में प्रेम, विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान का होना आवश्यक है, लेकिन जब परिवार का कोई भी सदस्य नशे की लत का शिकार हो जाता है

परिवार की खुशियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि पूरे परिवार को संकट में डाल देता है। आज नशाखोरी एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है जो अनेक परिवारों को टूटने का कारण बन रही है। नशे की बढ़ती समस्या, आज के आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, गलत संगति, बेरोजगारी, दिखावे की प्रवृत्ति के कारण नशे का चलन बढ़ता जा रहा है। कई लोग मनोरंजन या शौक के रूप में नशा शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। कई बार नशे की लत लग जाने पर उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ परिवार पर भी पड़ता है। परिवार पर नशे का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपनी आय का बड़ा हिस्सा नशे की वस्तुओं पर खर्च कर देता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई, भोजन, स्वास्थ्य और अनावश्यक जरूरतों पर खर्च कम होने लगता है। कई बार परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। नशे की लत के कारण व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। परिवार में शांति और सौहार्द समाप्त हो जाता है। पति पत्नी के संबंध में तनाव बढ़ता है और घर का वातावरण अशांत हो जाता है। नशे की लत बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि घर में कोई भी सदस्य नशा करता है तो बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते और कई बार गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। नशा व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इससे अनेक गंभीर बीमारियां हो सकती है। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इलाज में होने वाला खर्च भी आर्थिक बोझ बढ़ाता है। मित्रों, सामाजिक सम्मान में कमी होना भी नशा का कारण माना जा सकता है। नशाखोरी के कारण व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा घट जाती है। लोग ऐसे परिवार से दूरी बनाने लगते हैं। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को भी शर्मिंदगी और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। नशे के कारण परिवार के टूटने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगातार नशे और उससे जुड़े विवादों के कारण कई परिवार बिखर जाते हैं। पति पत्नी के बीच अलगाव, बच्चों की उपेक्षा और रिश्तों में दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। साथियों, आइए हम नशे के बचाव के कुछ उपाय पर प्रकाश डालते हैं। नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। युवाओं को अच्छी संगीत और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जाए। परिवार में प्रेम, संवाद, सहयोग का वातावरण बनाया जाए। विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। नशे की लत से पीड़ित लोगों को उचित परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जाए। खेल, योग और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मित्रों, नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। यह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं को भी जन्म देता है तथा परिवार की सुख शांति को नष्ट कर देता है। एक खुशहाल परिवार और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशे से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। हमें स्वयं भी नशे से बचना चाहिए और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना चाहिए। जब परिवार नशा मुक्त होगा तभी समाज और राष्ट्र मजबूत, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के माध्यम से आज की विभिन्न सभाओं में प्रसारित शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी कि 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे श्रमिक लोक प्रस्तुति।

6:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम, प्रस्तुति होंगी संजीव कुमार लाल की। 6:32 का समय होगा कार्यक्रम हमारी दुनिया का, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 का समय होगा हो लोकगीत का।

7:20 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार। 7:45 का समय होगा समाचार ध्वनि चित्र का। 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

8:45 का समय होगा समाचार संध्या का। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 का समय होगा उर्दू में समाचार का। 9:30 का समय होगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती का। दस बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, दिल्ली के ए श्रेणी के कलाकार U.S. प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन। 11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

ये थी आज की सभा में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आप सुन रहे थे यादें फिल्म से ये खूबसूरत संगीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था अनु मलिक ने, आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम का अगला गीत हमने लिया है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म है हम है राही प्यार के।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देवघर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश तथा झारखंड के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 भुजी मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लोहरदगा के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने आज सदर प्रखंड और शहरी क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर अनमैप्ड मतदाताओं की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने मतदाताओं को निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे मैपिंग अभियान की जानकारी दी तथा बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को आवश्यक निर्देश दिए। गुमला जिले के सिसई अंचल कार्यालय में आज अंचल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपायुक्त दिलेश्वर महतो सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भूमि मापी, दाखिल खारिज, लगान रसीद, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। गोड्डा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला स्तरीय बूथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं को संगठन सुदृढ़ीकरण, जनगणना और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया। और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 14 जून तक कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें चर्चा होगी केंद्र सरकार के 12 वर्ष और कृषि तथा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। होलोगी सुनिएगा बिरबल हांसदा और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत होगी भेंटवार्ता, गर्मी के मौसम में सब्जियों की खेती कैसे करें। भेंटवार्ताकार होंगी सन्नी गुड़सोरा और इनसे बातें करेंगे डोबरो बुड़ियोली। संथाली लोगी सुनिएगा मतंग हांसदा और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी सुनीता हांसदा और डोबरो बुड़ियोली की। 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। पर होगा बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। चर्चा होगी 15 जून राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर। राष्ट्रीय मुक्ति दिवस पर डॉक्टर जुझार माझी सीएस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस पर विशेष। ब्लड मैन के नाम से मशहूर लालू कुजूर से भेंटवार्ता होगी। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर सुनिए विशेष श्रृंखला में सरकार के 12 वर्ष, विषय होगा अष्ट लक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य, एपिसोड नंबर 13। सात बजकर 45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। 8 बजे होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर सुनिए आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10 बजे होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11 बजे हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गीत हमने लिया है फिल्म मेरा नाम जोकर। गायक कलाकार हैं मुकेश।

0: अगला गीत है फिल्म प्यार का सागर। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।
1: मुझे

अभी आपने सुना फिल्म दिल एक मंदिर का ये नगमा, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। और आइए सुनते हैं फिल्म खानदान का ये गाना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

0: കൽ ചമൻ.
1: कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं फिल्म सूरज का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की.

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को सुनीता हांसदा
1: पैते
0: जोहार। कैसे हैं किसान भाइयों और बहनों? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि डोबरो जी, अगर हम देखें तो अभी जो मौसम है प्रतिदिन जो है अचानक से बदलाव ले रही है, क्योंकि कभी धूप तेज़ हो रही है तो कभी बारिश हो रही है, और ऐसे समय में हमारा जो वातावरण है वो हमारे शरीर के साथ, हमारा जो शरीर का जो तापमान होता है उसके साथ वो सामंजस्य नहीं बना पाता है, और इस वजह से सर्दी खांसी की तरह की जो है बीमारियां होने लगती है।
1: इसो सारे का जिकिन जगरत वो सुनीता माई तिकिन चासिया गया को सारे के गामा दिन दो बेटा दो बेटा करना मैं दो सीता दी पिलें दो जेटे लोलो ताई ने अंडो अयुब सिंह दी पिलें दो अंडो गामा ताई ने मिसे दो पूरे गामा दो का हो जो सुनीता जी सामा गड़ा गुड़ो रिमिल के साड़ी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी जिस तरह
1: वो को इस बोरो के यो अटकर हुआ ओल तंडे ओकोन कोनता तो वज्रपात को होबा उतना अब ए चासी उरी को तेरगो एक उतना नेलेकन घटना को विपत्ति को होबा उतना मंडो जदि अब उरी को चासी उरी को अब पीपे पर को वज्रपात को गुजुआ एन दो एन देन उरी घुसी चिमिन दुपुरे टाइयो नेलेकन तकलीफ को हुबन तंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमें भी अपनी सावधानी को बरत के रखना है, और जैसा आवश्यकता हमारे लिए होगा हमें वैसे बाहर जाना है। तो डोबरो जी, इसी आशा के साथ आइए आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सबों को ढेर सारी हार्दिक बधाई, क्योंकि अब जो है हमारे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं कृषि तथा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के रूप में। और आज का हमारा विषय भी इसी विषय को लेकर के है, चर्चा जो हम कर रहे हैं इसी विषय को लेकर के, क्योंकि हमारे किसान भाई बहन को अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में पता ना चले तो ये अधूरा जानकारी होता है, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमने किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे विकास कर लिए हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र को केवल खेती तक सीमित नहीं रखा, बल्कि किसान कल्याण, आय सुरक्षा, तकनीकी आधुनिकीकरण, बाजार पहुंच और ग्रामीण विकास को जोड़कर एक व्यापक कृषि इकोसिस्टम विकसित करने का प्रयास किया है। इस दौरान कई ऐसी योजनाएं और सुधार लागू किए गए जिनका उद्देश्य खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और किसान केंद्रित बनाना रहा।
1: केंद्र सरकार शेषन तंती अगल भरसिर में होबा है ना अब मानतन दिसुम दुवन प्रधानमंत्री वो मैंने तो ना दिसुम दुवन नरेंद्र मोदी तक अनार रे चासी हो को ओकोन ओकोन लेकाना बिनितिर रिया उरु को टाइक ना इना को नामा नामा जिनिस को नेन टेनेट जोग रे टेक्नोलॉजी जोग रे अब लेलतन गया एनेत अब चास पास रे अब आत्मनिर्भरता लगे अब उन्नति लगे बनोदल तो होबा करना चिलके सुनीता जी ना अब सोलर द्वारा माने सोलर द्वारा दा अब चास है तो टायर को सनी सनी पाइपलाइन द्वारा एन चास है कुंडित बिटाती आले करना को हतो दिसम को ले लो तना अयर ते तो अब सोलर द्वारा दा इडतिया को खेती तिया को इना कबुचिर गेलडा मेंडो होते रो ना इसु पूरे जगह रे मेंडो होए इनारे माध्यम ते एने दाए इडिके ते चास दइए अगर जदि एनरे आबो ओंडो के चासे होगो दिंगा दिपिंगा के नेते निनारे अपनाइट बो एमेर दो ओंडो बुगीते बो पाइट दइ ओंडो बिनितिर होरा रे अंडो आबो जीवन होरो हरद होरा रे आयर पाबो तेर सम।
0: बिल्कुल डोबरो जी, अगर हम बात करें कि इन 12 वर्षों में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं, या अगर हम कहें तो उनके लिए उनको बहुत सारी सफलताएं मिली, जैसे अगर हम कृषि अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिली, अगर उस विषय में हम बात करें तो पिछले 12 वर्षों में निरंतर नीतिगत फोकस और सार्वजनिक निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से भारत के कृषि और संबंध क्षेत्रों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। देश में कुल सकल मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी आज करीब 18% पर मजबूती से टिकी हुई है। रिकॉर्ड कृषि बजटीय सहायता, यह आर्थिक प्रगति और ढांचागत सुधार इसलिए संभव हो पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि विभाग की बजट की सीमाओं को पूरी तरह बदल दिया। सरकार ने किसानों के कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर रखा। कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए बजटीय आवंटन वर्ष 2013-14 के महज 27,663 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 के लिए 1,40,528.78 करोड़ रुपये कर दिया गया, यानी यह लगभग 5 गुना